जो काला कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीरा बिन हर भगत न मुक्त होए इउ कह रमे कबीरा। कबीर मन निर्मल पिया जैसा गंगा नीरा पाछे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीरा। कबीर हल्दी पीहरी चूना उज्जल पा उज्जल पहाए राम स्नेही तो मिले दोनों भरत बरन गवाए। कबीर हरदी पीर्तन रहरे चून चहन ना रहाए बलिहारी ए प्रीत को जय जात बरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वारा संकरा राई दसमें पहाए मन तो मैगल होए रिओ निकसो क्यों लकै जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले टूटा करे पसाओ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर ना मोहे शान ना छापरी ना मोहे कर नहीं गाओ मत हर पूछे कौन है मेरे जात न नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो तहर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बारा। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीरा क्या जानो कुछ हर किया पियो कबीर कबीरा। कबीर सपने हूँ बड़ाए कै जय मुख निकसे राम ताके पगन की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पूतरे मानस राख्यो नाओ चार दिन दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर कहलिया आप बसाए बसाए तै पैसे बात न पूछिए कबू न लाई पाए। कबीर जे दर आवत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। कबीर डुब्बा था पै उभरियो गुण की लहर चबाका जब देखियो बेड़ा जर जरा तब उतर परियो हों पर का। कबीर कबीर पापी भगत न पावे हर पूजा ना सहाए मखई चंदन पर हरे जय बिगंध तै जाए। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवन हारा। कबीर

मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सुधारा हलीन। कबीर रस को गाढ़ू चूसिए, गुण को मरिए रोए। अवगणी हारे मान से, पलो न कहे कोए। कबीर गागर जल परी, आज काल जह फूटा, गुरजो न चेते अपनो, अध जा माज लिह जेंगे लूटा। कबीर कुकर राम को, मोती अमीरो नाओ, गले हमारी जेवरी, जय की चेते जाओ। कबीर जपनी काठ की, क्या दिखलावे लोए, हृदय राम न चेते, ए जपनी क्या होए। कबीर बिरों पे अंगम मन बसे, मंत न माने कोए, राम बिहोंगे ना जिए, जिए तबारा होए। कबीर पारस चंदने, तिन है एक सुगंधा, ते मिलत उत्तम पहे, लो काठ निर्गंधा। कबीर जम का ठेगा बुरा है, ओ नहीं से आ जाए, एक जो साधु मोह मिलियो, तिन लिया अंचल लाए। कबीर वैद कहे।

अंत अंधा लोग न जाने रिहो कबीरा कूका। कबीर सती पकारे चेचड़ी सुनहो बीर मसान। लोग सभाया चल गया हम तुम काम निदान। कबीर मन पाखे पियो उड़ उड़ दह दिस जाए। जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर। सोई फिर कह तू पिया जाको कहता और। कबीर मारी मरो कसंकी केले नित जो बेरा। ओ झूले ओ चीरिए साकत संग नहेरा। कबीर पार पर आई सिर चरे चलियो चाहे बाटा। अपने पहारे ना डरे आगे औकट काट। कबीर बन की दादी लकरी टांडी करे पुकार। मत बस परो लहार के जारे दूजी बार। कबीरे कमरंते दो मुए दोए मरंत है चार। चार मरंत है छे मुए चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया कहू न पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेत्यो कहाँ पलाने और। कबीर संगत करिए साधकी अंत करे निर्वाओ। साकत संग न कीजिए जाते हुए बिनाओ। कबीर जग में चेत्यो जान कै जग में रियो समाए। जिन हर का नाम न चेत्यो बांधे जन्मे आए। कबीर आसा करिए राम की अबरे आसन रास। नरक परे ते माने जो हर नाम उदास। कबीर सिख साखा बहुते किए किसो कियो न मीता। चाले थै हर मिलन को बिचे अटके उचीता। कबीर कारण

आए। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पते आए, हर जैसा तैसा ओहे रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगे चतारे पी चुगे चुग चुग चतारे, जैसे बिचरे कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातक ज्यो तसर तरसत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चकी ज्यो निस बिचरे आए मिले प्रभात, जो तसर जो नर बिछरे राम सियों ना दिन मिले न रात। कबीर नारायण बिछोरिया रहो रे संक मजूरा, देवल देवल दाहड़ी दिसे अवगत सूरा। कबीर सुत्ता क्या करे जागर रोए पै दोखा, जाका वासा गौर में सो क्यों सोवे सोखा। कबीर सुत्ता क्या करे उठ के न जपे मरार, एक दिन सोवन होएगो लांबे गौंड पसार। कबीर सुत्ता क्या करे बैठा रहो अर जाग, जाके संग ते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साकत संग न कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो कुछ लागे दाग। कबीर राम ना चेतियो जरा पहुंचियो आए, लागे मंदिर द्वार तै अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पियो जो की नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एके सिरजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंबा, जाए पहुंचे खसम जो को जो बीच न खाई कांबा। कबीर ठाकर पूजे मोल मन हट तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाए। कबीर पान परमेसर किया पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे बुढ़े काली तारा। कबीर कागद की उबरी मस्के कर्म कपाट, पाहन भोरी प्रेतमी पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अभ कर अब करता सोए ताल, पाचे कुछ न होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीरा ऐसा जंत एक देखे वाहिगुरु, कबीर ऐसा जंत एक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल भौकना मत ही नान पाक। कबीर मेरी बुद्ध को जमना करे तिस्कार, जिन्हे जमुआ सिरजया सो जपया पर विदगार। कबीर कस्तूरी पिया पवर पहे सब सास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गच परियो कटंब कै कांठे रिहो गयो राम, आए परे तरम राय के बीचे तुमा ताम। कबीर साकत ते सुकर भला राखे आछा गाओ, ओह साकत बपरा मर गया कोए न लह नाओ। कबीर कौडी कोडी जोर के जोरे लाख करोर, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लगोटी तोरा। कबीर वैष्णु होता क्या पिया।

होए। ऊच भवन कन कहा मने शिखर तजा फहराए, ताते भले मतु करे संत संग गुन गाए। कबीर पाटन ते उजर भला राम भगत जय ठाए, राम स्नेही वाहरा जम पर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काटा, तहां कबीरे मट किया खोत खोजत मन जन बाटा। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभे और, हीरा किसका बापरा पूजे न रतन करोड़।

तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिए ऐसा सिमरो नेता, अमरा परवासा करहो हर गया बहोरे बेता। कबीर सेवा को धोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जय मार्ग पंडित गए पाछे परी बिहीरा, एक अवकट काटी राम के तह चढ़ रहो कबीरा। कबीर दुनिया के दुखे मुआ चालत कुल की आकाना, तब कुल किसका लाज से जब ले तरे मसान। कबीर डुबे गोरे बापरे बोलोगन की कान, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर भली मतू करी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बडराज। कबीर दावे दाजन होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे सोगने इंद्र सो रंक। कबीर पालम सुहा सरबर परा पी ना सके कोई नीरा, भाग बड़े तै पायो तू पर पर पियो कबीरा। कबीर प्रभाते तारे किस है त्यों ही किसे शरीरा, ए दो अखर ना किसे जो गहे कहो कबीरा। कबीर कोठी काठ की दै दिस लागी आग, पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उभरे भाग। कबीर संसा दूर कर कागद दे ब्याए, बाबन अखर सोध कै हर चरनी चित लाए। कबीर संत न छाडे संत ही जो कोटिक मिले असंत, मलिया गर भयंगम बेडियो ता शीतलता नात जंता। कबीर मन शीतल पिया पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जा रिया सो जन के उदक समान। कबीर

अब जानिए मिटे मोतन ताप, हर सोग दाजे नहीं तब हर अपे आप। कबीर राम कहन में भिद है ताम है एक विचार, सोई राम सबे कहे सोई कौतक हार। कबीर रामे राम कहो कहवे माहे, कबीर रामे राम कहो कहवे माहे बबेक। एक अनेक मिल गया एक समाना एक, कबीर जा कर साधन सेवी है हर की सेवा नाहे। ते कर मरहटक सारखे पूत बसे तिन माहे, कबीर गुंगा हुआ बाहरा बाहरा, कबीर गुंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान। पावो ते पिंगल पिया मारिया सतगुर बान, कबीर सतगुर सुगुर में बाया बान जो एक। लागत ही पुए गिर परिया परा कले जे शेक, कबीर निर्मल बूंदे कास की पर गई भूम बिकार। बिन संग त्यो मान।

दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाई। दफ्तर लेखा नीक से मार मोह मुखाई। कबीर लेखा देना सहला जो दिल सूची होई। उस साचे दीवान मह पला न पकड़े कोई। कबीर धरती और आकाश मह दोए तू बरी अबद। खट दर्शन सांसे परी और चरासी ही सद। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं।

ओंकार सतगुर प्रसाद काचे देहे मोह पन बांधी सठ कठोर कुचिल को ज्ञानी तावत भरमत रहन निपावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जोबन रूप माया मद माता विचरत विकल बड़ो अभिमानी पर तन पर अपवाद नार निंदा जिहे मीठी जी माहिया तानी बलवंच शब कर तू पावा पेखत सुनत प्रवे अंतर जामी सील धर्म दाया सुच नासत आयो सन जी के दानी कारण करन समरथ श्री तार रख लिहो नानक के स्वामी कीरत करन सरन मन मोहन जोहन पाप वधारन का हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलह समूह आधारन सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना सांगला होशो काज अलप सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पाओ सिखिया संत।

और सतगुरु प्रसाद अभ्यागत इह नाखे जिनके मन में भरम तिनके दिते नानका तेहो जिया धर्म अपै निरंजन परम पद ताका भिख कोय तिसका भोजन नानका विरला पाए कोय। हुआ पंडित ज्योत के वेद पढ़ा मुख चार नवा खंडा विच जानिया अपने चज विचार ब्राह्मण कैली घातकुंचा अणचारी का तान फिटक फिटका कूड़ बदिया सदा सदा अभिमान पाहे ते जाहे विसर नानका एक नाम सा बुद्धि जलाई है इक रह तत ज्ञान माथे जो तुर लिखे सो मिट न सका कोई नानक जो लिखिया सो वर्तदा सो बुझे जिसनु नदर होए जिन्ने नाम विसारे कूड़े लालच लाग धंधा माया मोहने अंतर तिसना आग जिन्ना वेलन तुम्बड़े माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिले वग साग आ भुलाए भूलिए आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छूटिए जे चले सतगुरु भाए साला ही सालाहना भी सच्चा साला नानक सच्चा एक दर बीपा पर हरियाए नानक जय जय मैं फिरों तै तै सच्चा सोए जय देखा देख है

काम क्रोध का चूलड़ा सब गल आए पाए, एक उपजा एक बिणस जाए, हुक्म आवे जाए। जमन मरण चुके रंग लगा दूजे फाए, बंधन बंद पवाए ना करना कछु न जाए। जिनको कृपा धारियण तिन सतगुरु मिलया आए, सतगुरु मिले उल्टी भाए, मर जीव्या सह सुभाए। नानक भगती रत्या हर हर नाम समाए, मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराए, कीता करत्या बिरथा गया इक तिल थाए न पाए। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाए, बिन सतगुरु जमकाल न छोड़े, दूजे पाए खुआए। जोबन जांदा नदर न आवे, जर पहुंचे मर जाए। पुत कलत मोहित है अंत बेली को न सखाए, सतगुर सेवै सो सुख पाए, नाम वसे मन आए। नानक से बड़े बड़फागे, जे गुरमुख नाम समाए। मनमुख नाम न चेतने, बिन नामे दुख हो दुख रोए, आत्मा राम न पूजने दूजे क्यों सुख होए। होमे अंतर मैल है शब्द न काढ़े धोए, नानक बिन नाव्या मैले मुए, जन्म पदार्थ खोए। मन मुख बोले अंदले तिसमें अग्नि का वास, बाणी सुरत न बूझणे शब्द न करे प्रगास। उन्ह अपने अंदर शुद्ध ने गुरु बचन न करे विसास, ज्ञानिया अंदर गुरु शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानिया की रख रख दा हों सद बलहारी तास, गुरमुख जह हर सेम दे जन नानक ताका दास। माया भयंगम सर्व है जग घिरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है, गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुरु मिले आया है, मिल सतगुरु निर्मल होया बिखों में गया बलाए। गुरमुखा के मुख उजले हर दर के शोभा पाए,

नाम रति से धनवंत है न निर्धन होर संसार जन के टेक हर नाम हर बिन नामे ठबर न ठाओ गुरमते नाम मन वसै

हर हर नाम उर तारिया, हर हृदय कमल प्रगास, सतगुर सेवन अपना हौ सद बलिहारी तास, नानक तिन मुख उजले जिन अंतर नाम परगास। शब्द मरै सोई जन सिजै, बिन शब्द मुक्त ना होई, पेख कर हैं बहु कर्म विगुते, पाए दूजै परज विगोई, नानक बिन सतगुर नाउ ना पाई है, जे सौ लुचै कोई।

अपड़ कोई ना सकाई, जे सौ लुचै कोई, मुख संजम हच्छा ना हो भाई, कर पे पवै सब कोई।

तिसना बुझैत पत हुई हर कह नाई प्यार। नानक गुरमुख पाई है हर अपनी कृपा तार। बिन शब्द

हर बिन सजाई खेनवार। वड भाग होवे सतगुर मिले हो मैं तजै विकार। हर नामा जाप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। बिन सतगुर भाग

हर पखंड सब कर्म करे मन हृदय कपट कमाए हेत शरीर जो बीजिया सुअंत खलो आया नानक की प्रभेन ते

जिन तुर मस्तक भाग लिखाए, अंदर तृष्णा अग है मन मुख भुख न जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है कूड़ रहा लपटाए।

छोट गोट मलारी तुनी पुन गावे हे आशा गुन गुनी ऊचे सुर सुओ पुन कीनी मेघ राक्षो पांचो चीनी बैरा थर।

श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तिने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास, ताकू बिघना को लागे जाकी प्रभ आगे। अरदास अरदास इको ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती सहाय वार। श्री भगवती पातशाह दसवें प्रथम गौती सिमर कैद। गुरु नानक ले त्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास। रामदास हुई सार जन हर गोविंद नो सिमरो। श्री हराए श्री हर कृष्ण त्याए जेह रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे करुणाउन दे आवे ताए। सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह की जोत। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दे दार दा ध्यान धर के बोलां जे। पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां गुरमुखां नाम जपिया वंड छकिया दीक चलाई तेग वाहे तिन्हां दी कमाई वल ध्यान धर के बोलां जे। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे शीश दिते बंद बंद कटवाए खूपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए। गुरुद्वारियां दे सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसां सवासां संग निभाए तिन्हां दे कमाई वल ध्यान धर के बोलां जे। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलां जे। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। नाम चित्याव चित्याव का सदका सर्व सुख हो जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रचिया रहा देख देख फतेह बिरद के पैच पंथ के जी श्री साहब जी सहाये खालसा जी के बोल बाले बोलना जे। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान सह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जशन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जे। सिखा दा मन नीवा मत उच्चे मत दा राखा पवाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान खालसा जी नूं बख्शो जी निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ओ आप जी ने अपार बख्शिशां रहमतां कीतियां ने परसों रोज तों समूसा संगतां नूं खुले दर्शन दारे बख्श के नदरे नदर निहाल कर रहे हो। आप जी का कुटान कुट धनवाद है सतगुर से पातशाह जी। आप जी की बख्शिश रहमत दे सदका सतगुर से पातशाह जी आप जी की हजूरी अंदर गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सतगुर से पातशाह डरबी वालों और समूह साध संगत वालों मिल जुल के आप जी के चरणों का टेक ओट आसरा लैके जून 1984 दे समूह शहीद सिंघां दी याद मनाउंदे सतगुर सिंह पातशाह जी परसों रोज तो आप जी दे चरणां दा टेक ओट आसरा लैके श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ कराए सन सतगुर सिंह पातशाह जी। आप जी दे बख्शिश रहमत ते सदका आप जी दी हजूरी अंदर सतगुर सिंह पातशाह जी निर्विघनता सह संपूर्ण भोग पाए गए। सतगुर सिंह पातशाह जी पाठी सिंघां कोलों बाणी पढ़दे हन सेवादारा को सेवा करदे अनेक प्रकार दी गलतियां भुला हो गई होंगे अनजाण बच्चे जानक माफ करना अगो वास्ते सुते स्पष्ट बाणी पढ़न दा बल बख्शना सुस सेवा लैने गुण अवगुण विचारने पढ़े सुनी बाणी दा भाव आई संगत दे हिरदे विखे सुनाई संगत दे हाजरी कदम लेखे लाउणी तिल फुल भेटा प्रवान करने परिवारां विखे सुख शांति खुशियां खेड़े नाम दान दी दात बख्शनी गुरसिखी जीवन दी दात बख्शनी अंग संग हो के सहायता करनी हर मैदान फतेह बख्शनी सतगुर से पातशाह जी समूह साध संगतां दे प्रबंधक कमेटियां दे सिर ते मेहर भरिया रखना इसे तरह उद्यम उपराले बख्शिशां रहमतां करनियां चढ़दियां कला दी दात बख्शनी सतगुर से पातशाह जी। गुरमुख परिवार आप जी दे चरण सिवगुर सतगुर से पातशाह जी सरदार गुरवीर सिंह बीबी जसमीत कौर जी सतगुर से पातशाह जी अपने सपुत्रे
ਬੱਚੇ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਹਿਤ ਖਾਣ ਬੱਚੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਦੀਰਘਾਯੂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਪ੍ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਮਾਜਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਥਰਕਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਵਿਸਾ ਸੰਵਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਅਕੇ ਸੁਆਵੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ

जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ तो मार्ग पैर त्रिजै सिर दीजै कान ना कीजै सूरा सुपहचानियै जूलर दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मर कब होना छाड़ खेत गगन दमामा बाजू परियू निशान काऊ खेत जो मांडियू सूरमा जूजन को दाऊ सुकोटल गुर सेवी हंस सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जानम मारन दुख जाई दर्शन परसे गुरु कै जानम मारन दुख जाई

0: मस्तक हो करा जोहदड़ी, नतमस्तक हो करा जोहदड़ी, मिल जाए मान सवाया, मिल जाए मान सवाया।
1: नतमस्तक हो करा जोहदड़ी, नतमस्तक हो करा जोहदड़ी, मिल जाए मान सवाया, मिल जाए मान सवाया।
0: चिंता सोग दा उठ जाए डेरा, चिंता सोग दा उठ जाए डेरा, खुशियां दिखे।

मनमुख गणत गणामणी करता करे सो होए ताकी कीमत ना पवे जे लोटे सब कोए गुरमत

खेल गए से पंखणों जो चुंगन दे सिर तल घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल

जिस प्यारे सोने हो तिसे आके मर चलिए मन तन आगे राख के ऊबी से करे सतगुर आगे शीश पेट देओ जे सतगुर सच पावे जे सतगुर सच पावे आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे जिस प्यारे सियाने हो तिसे आगे मर चलिए त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवन हमारे एहे कृपा

बिन दर्शन कैसे रौसने ही, हाँ दोहागन खरी रंजानी। सब कंत रतियां मैं दोहागन पित, मैं तन अवगण एतड़े, खसम न फ